0: सबसे बड़ी फैन है इस दुनिया में वो है आपकी बिटिया एनी
1: और माय वाइफ टू.
0: यस, तो वो दोनों गाना गाती हैं कि नहीं? पल्लू और एनी?
1: नहीं, पल्लू सिर्फ सुनती हैं, उनको उसी में ट्रेन किया है मैंने.
0: सिर्फ घर में डॉक्टरी करती हैं.
1: माय डॉटर एनी, वो काफी म्यूजिक किया उसने,
0: क्योंकि मैंने की तो पैदाइशी हुई है गानों के बीच में,
1: बहुत किया है. But she chose to become a business person. और उसी तो आजकल वो, लेकिन मेरी granddaughters जो हैं वो काफी म्यूजिक कर रही हैं.
0: कितनी बड़ी हैं?
1: और बड़ी वाली जो है सबसे वो 12 साल की हो गई है. Next one is 8 and then 5. तो सारे जो, और the eldest one, I think she has got a bit of music in her. तो वो काफी.
0: आपने बहुत सारे नए कलाकारों को ब्रेक दिया है.
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: क्या आप सोचते हैं कि आप अपनी बिटिया को या granddaughter को भी ब्रेक देंगे अपने प्रोग्राम?
1: नहीं नहीं नहीं, मैं I don't believe in that. और क्योंकि म्यूजिक ऐसी चीज है वो दिल से आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं मेरा इन्फ्लुएंस है सिडनी में आज के मेरी बेटी को या मेरे ग्रैंडर को खड़ा कर दूं स्टेज पे. आई डोंट बिलीव इन दैट फिलोसॉफी. अपने मेहनत से करो. हाँ. जो भी करना है जिंदगी में, मैं कुछ नहीं करूंगा. मेरा नाम भी मान लो. ऐसी मेहनत करो कि लोग भागे तुम्हारे पीछे, तुम्हें ढूंढते हुए आए. इसको मेहनत कहते हैं. और सिर्फ म्यूजिक में नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में.
2: तो लीला तवानी जी लिखती हैं अभिजीत जी कि उन्होंने आपका कार्यक्रम 3 साल पहले देखा था और उसके बाद उनको कोई भी कार्यक्रम उस स्तर का नहीं लगा.
1: अच्छा, थैंक यू वेरी मच.
2: जैसा आपने बोला कि लोग आ जाते हैं,
1: लोग ढूंढते हुए आएंगे आपको. अगर आपका काम अच्छा है तो लोग खुद ढूंढेंगे आपको, आ जाएंगे. सेम थिंग फॉर माई फैमिली.
0: बहुत से गायक हैं जिनके बच्चे जो हैं वो उतने ही अच्छे गाने वाले हैं और उनको भी मिला है ब्रेक. सो हो सकता है कि आपकी ग्रैंडडॉटर जो है वो भी एक दिन तब आपका नाम लेगी. अभी तब तक नहीं लेगी आपका नाम.
1: ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम्स.
3: अभिजीत भाई, आप समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए इतने दिनों के बाद. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आशा है कि आपका 6 तारीख का जो कंसर्ट है वो सक्सेसफुल रहेगा. आपके सारे प्रोग्राम सक्सेसफुल ही रहते हैं.
1: थैंक यू.
3: आपके इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका सपोर्ट और हम लोगों का सपोर्ट, आपके समाज का सपोर्ट आपके साथ है. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: और एक चीज़ जाते जाते,
3: हाँ बोलिए,
1: कि 14th जून को यहाँ पे इंडिया से आ रहे हैं
0: जी
1: प्रसन्न राव. आई विल बी ऑन स्टेज विद हिम. तो रफ़ी के गाने गाएंगे और मैंने बहुत ऐसे गाने वालों के साथ बजाया है और स्टेज पर जो रफी के गाते हैं, बट ही हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन इन माय करियर.
2: उसका भी एक टिकट हमारे,
1: हाँ दे रहे हैं, एक फ्री टिकट है. आप जरूर उसको पब्लिसाइज करें. ही इज ब्रिलियंट, आई कैन टेल यू, टेक इट फ्रॉम मी.
3: तो अभिजीत भाई, आपके जाते जाते आपको ओपी नैयर का एक और गीत सुना देते हैं.
1: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल.

0: Curry Master's Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, हमारे दूसरे मेहमान आ चुके हैं, केदारनाथ जी। केदारनाथ जी को आप जानते होंगे, इनका कंसर्ट हो रहा है 4 जुलाई को, गाता रहे मेरा दिल। तो केदार जी, आपका दर्पण के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे श्रोताओं की ओर से और अपनी ओर से नमस्कार और आपका स्वागत है।
2: थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।
1: तो केदार जी, हम जब भी हमारे यहाँ, आप पहली बार आए हैं, अभिजीत भाई तो हमारे यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, आप पता नहीं पहली बार क्यों आए ये समझ नहीं आया, लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप भारत में कहाँ से हैं और कब आए ऑस्ट्रेलिया?
2: मैं देखिए, मेरे पिताजी जो थे, ही वॉज इन द नेवी, तो आपको मालूम है नेवी सर्विसेज में सभी जगह हम जाते हैं। आई वॉज बॉर्न इन विशाखापट्टनम,
1: अच्छा,
2: और आई स्टडीड इन दिल्ली और फिर कलकत्ता और फिर सब जगह,
3: पूरा भारत,
2: भारत में,
3: भारत का।
2: वैसे आई एम फ्रॉम कर्नाटका।
1: अच्छा अच्छा,
3: कन्नाडा। ऑलराइट, ओके।
1: वैसे आपकी आपकी भाषा से ये लगता है आप दिल्ली के आसपास के हैं कहीं से।
2: सभी जगह। आई नो अबाउट 12 लैंग्वेजेस, यू नो,
3: 12 लैंग्वेजेस,
2: मराठी, हिंदी, पंजाबी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ, यू नो, बिकॉज वी गो अराउंड एवरीवेयर ना, सभी जगह हम।
3: बहुत बड़ी बात है, 12 लैंग्वेजेस कोई आसान थोड़ी।
1: हाँ, ये जाता है शैलजा जी की जिसको एडिशनल लैंग्वेजेस आती हैं वो बड़ा इंटेलिजेंट होता है। तो केदार भाई को तो 12 आती हैं, तो सुपर इंटेलिजेंट है।
2: नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट वो
3: तो कंफ्यूज नहीं होते आप कभी कि मराठी को हिंदी में ले आए और पंजाबी को
2: ना जी ना
3: कन्नड़ में ले आए?
2: अच्छा, कोई बात नहीं, ये लोग को पता नहीं लगता मैं कहाँ का हूँ, यू नो, आई एम फ्रॉम भारत।
4: तो आपकी स्कूलिंग भी अलग अलग
2: अलग अलग
4: रीजन, हाँ जी, में हुई?
2: हाँ जी, हाँ जी,
4: सर,
2: हाँ जी।
4: जब आप बच्चे होते हैं तब ज्यादा जल्दी भी लर्न करते
2: correct,
4: हैं।
2: करेक्ट, वो तो
4: वो होता
2: है, बिकॉज व्हेन यू आर यंग यू कैन पिक अप एनी लैंग्वेज, आप कहीं भी चले जाइए आप उसको, आपको बहुत ही आसान हो जाता है, पर आफ्टर सर्टेन एज मुश्किल हो जाता है।
1: अच्छा, आप यहाँ कब आए, ऑस्ट्रेलिया कब?
2: हाँ, मैं आया यहाँ पे 1983।
1: अच्छा, बहुत पहले आ गए थे, आपसे मुलाकात हमारे ये आज हो रही है।
2: देखिए, ये बस ये जब जब जो जो होना है तब तब से सो होता है।
1: अच्छा,
2: यही है ना, ये वी डोंट अंडरस्टैंड, ये जो है ये जस्ट माया है, इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिवर्सल अट्रैक्शन।
1: अरे वाह,
2: कब कब होता है। देखिए, मैं मनोज जी से बात हो रही थी मेरी, जो मेरा 4 जुलाई का गाता रहे मेरा दिल सीजन 2 है।
1: अच्छा,
2: तो ही सेड टॉक टू दर्पण रेडियो, यू नो, टॉक टू प्रदीप जी, एंड दैट्स हाउ मैंने आपके साथ बात, जब मैंने आपसे बात हुई, देन यू आस्क्ड मी टू कम हियर एंड हैव अ डिस्कशन।
1: नहीं, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये है कि आपका कंसर्ट भी बहुत अच्छा होगा, आपकी आवाज़ ऐसी है कि लगता है कि किसी गाने वाले की आवाज़ होगी। तो दोस्तों, हम इससे पहले कि केदार जी के गीतों के बारे में बात कर रहे हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपने अभी तक अगर कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करिए, क्योंकि आप जीत सकते हैं 5 टिकट। आज 2 टिकट अभी अभिजीत भाई देकर गए हैं और 1 टिकट जो 14 तारीख को
4: रफी जी
1: का कार्यक्रम है, उसके 1 टिकट है, और 2 टिकट केदार भाई जी दे रहे हैं हमें। केदार जी, बड़ा अच्छा है आप दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपका मूड जरा बना दिया जाए, क्योंकि आपकी पसंद का एक गीत सुनाते हैं।
2: ज़रूर।

0: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accounts and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention the Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website, www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of the Open Radio.
1: Kedarji, aapne geet sunvaya hai main apni pasand ka. इसके बारे में थोड़ा सा बताइए.
2: देखिए, ये आई लव ओल्ड सॉन्ग्स, ओल्ड इज गोल्ड, आपको तो मालूम है. तो हमारे घर में सभी मेरी छह बहनें हैं एंड आई एम द ओनली सन.
1: अच्छा.
2: सो एवरीवन इज म्यूजिकल. और मेरी जो मेरे पिताजी जो थे, ही वाज अ वेरी गुड सिंगर.
1: अच्छा.
2: एंड ही वांटेड टू बी लाइक भीमसेन जोशी.
1: अच्छा अच्छा.
2: तो देखिए, ये क्या होता है ना, जब हम बचपन में, व्हेन वी आर 5-6 और 3 ईयर ओल्ड और वी आर ऑल स्लीपिंग, डैड यूज्ड टू सिंग ऑल ओल्ड सॉन्ग्स.
1: अच्छा.
2: तो उसमें क्या हो गया ना, इट रिटेन्स इन द मेमोरी. और वही, यू नो, बहुत, मतलब बहुत पुराने गाने भी आई नो, आई कैन स्टिल, वो डैडी का आवाज जो आता है ना, वो तो गुनते रहते हैं, यू नो.
1: अच्छा.
2: सो उससे वी स्टार्टेड लाइकिंग ओल्ड सॉन्ग्स.
1: अच्छा, आपके घर में तो फिर कोरस था पूरा आपका.
2: हाँ, वी वर अ वेरी म्यूजिकल फैमिली. और मेरी सिस्टर शोभा यहाँ पे गाती है, शोभा इंग्लेश्वर, शी ऑल्सो सिंग्स अ लॉट, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में.
1: अच्छा.
2: बड़े प्रोग्राम में शी गोज एंड सिंग्स. माय अदर सिस्टर हुज इन बैंगलोर, गिरिजा दीदी, शी डिड इंटेंसिव क्लासिकल ट्रेनिंग.
1: अच्छा.
2: तो शी इज ऑल्सो वेरी गुड सिंगर. तो थ्री या फोर ऑफ अस वी सिंग. और जब मैं यहाँ पे आया, आई ऑल्सो सेड, अगर मेरे को गाना है एंड यू नो आई हैव टू लर्न, बेसिक तो सीखो ना, नॉट टू बिकम तानसेन. तो आई वेंट यहीं पे, मेरी गुरु जो है दीपानिता भट्टाचार्य, शी वॉज सिंगिंग इन ऑल इंडिया रेडियो. And she also was from Bhatkande University. We call her affectionately Didi. तो वहाँ पे मैं 4 साल हिंदुस्तानी क्लासिकल.
1: यहाँ पर से?
2: यहीं पे जी.
1: हम उन्हें बुलाना चाहेंगे.
2: But she is become very old now.
1: अच्छा.
2: और she is to and both of them are very frail now.
1: अच्छा.
2: Very sad, you know. अच्छा. But I think they are going back to Calcutta.
1: अच्छा.
2: हाँ जी. हाँ.
1: नहीं तो हम तो यहाँ बुलाना चाहते हैं इस तरह की टैलेंट को, लेकिन अगर फ्रेल हैं, दिक्कत.
2: वेरी फ्रेल. एंड आई डोंट इवन नो नाउ वेदर दे आर ऑलरेडी इन कोलकाता.
3: तो शोभा जी आपके साथ बहुत दिनों से गाती हैं.
2: हाँ, हम लोग गाते रहते हैं. यस, वी
3: शी इज वेरी गुड सिंगर.
2: यस यस
3: यस, शी इज वेरी गुड पर्सन.
1: आपकी सिस्टर है ना वो?
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: अच्छा, आप, ये मुझे नहीं पता था आपकी सिस्टर है.
2: हाँ.
3: क्योंकि मैं जानती तो उनको अच्छी तरह.
2: हाँ, हाँ, ये,
3: लेकिन yes. ये कभी नहीं पता लगा. तो आप, ये तो पैशन है आपका.
2: हाँ,
3: संगीत, इसके अलावा आप क्या करते हैं मेनली?
2: मेरी जर्नी यहाँ पे, आई हैव गॉट अ ह्यूज जर्नी. तो आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ राइट इंडियन एसोसिएशन. ओके. आई एम ऑल्सो द co-founder of Australian South Asian Forum.
3: Australian?
2: Australian South Asian Forum.
3: Oh, right.
2: Or we started doing the South Asian Film Arts Literature Festival.
3: Right.
2: Safal Festival. Uh-huh. 2017. Uh-huh. We collaborated with Macquarie Uni. और इसका क्या खूबी है कि वी ब्रिंग 8 साउथ एशियन कंट्रीज टुगेदर इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक एंड फिल्म्स.
3: राइट, राइट.
2: तब से, सो इट्स ऑर्गेनिक, कमर्शियल नहीं है, बट इट्स यूनिक फेस्टिवल इन द वर्ल्ड.
4: सो इट स्टार्टेड इन 2017.
2: हाँ जी, हाँ जी.
1: अच्छा, ये बताइए कि आपकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप क्या क्या क्या, हाँ. क्या पढ़ा आपने?
2: आई हैव डन माय मैनेजमेंट एंड ऑल दैट एंड आई एम एट द मोमेंट आई एम अ sales director for a real estate company.
1: Achha.
2: I look after New South Wales operations.
3: Right.
1: Achha. Mm-hmm. तो ये आप बता रहे हैं, ये जो आपने यूनियन ऑफ न्यू साउथ वेल्स के से संपर्क में उनके साथ किया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, किस तरह का प्रोग्राम था जो 2017 में शुरू किया?
2: वही ना कि we wanted to bring the rich cultures of South Asia. तो इसमें, सो वी ब्रॉट 8 कंट्रीज टुगेदर, विच इज़ इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, and Maldives, all these countries in the South Asian region, Afghanistan. So it is not easy to bring, know, eight countries together. So I did a lot of hard work. Usse pele, you know, I was also a cultural director for United India Australia Friendship Fair. Char panch saal I've done. I've organized huge programs. You know, aapko malum hai, after the Olympics, you know, the Olympic was park was going to be a white elephant. So I think UIA and all of them said, why don't we do at the athletic center? So I was one of the cultural coordinator, and then I became a director there with under different Dr. Siddhilingeshwar Orekundi, Dr. Sina. Then there was Aruna Chandrala. Then there was all 6-7 saal. So wo background tha mujhe. And I was singing as well. And I was also a TV anchor for on TVS, TVS Sydney for 8 years.
1: Achha.
2: Yeah, I used to interview people, wagera, wagera, you know, ministers, people who came from India, singers, wagera. So, ye journey, this is my journey. So, it has been a great, I'm a people's person. I love people. And so, that's how we said, why don't we start the South Asian Film Arts Literature Festival? And usme kya ho raha tha? We have a competition every year, solo singing. Solo dancing, group dancing, instrumental. So we are giving a platform to young people.
1: बहुत अच्छा कर रहे हैं साहब. ऐसा है कि आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं और हम आपसे मुलाकात हमारी आज हो रही है. हम आपका पीछा अब नहीं छोड़ेंगे.
2: नहीं नहीं.
1: और आपसे अनुरोध है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम करें तो
2: वेरी हैप्पी हैप्पी सर टू कम एंड थोड़ी बहुत इवन इफ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट आई एम वेरी हैप्पी.
1: नहीं, इट वुड बी वेरी नाइस एसोसिएशन विद यू. आप ये बताया तो इसी बात पर एक गीत और हो जाए.
3: So, प्रदीप जी, गोल्ड डिगिंग ऐसी नहीं होती है. आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है तब आपको कहीं सोना मिलता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो हमारा जो परिश्रम था वो करीब करीब मैच्योरिटी पर आ रहा है.
3: क्योंकि आपका तो पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि मुझे तो उसको कॉम्प्रिहेंड करने में ही समय लग रहा है कि आप कैसे इतना सब कर सकते हैं. और जबकि रोजी रोटी जो आपकी वो कहीं और से आती है.
2: ये देखिए, ये दिस यू हैव टू बैलेंस विथ योर मिसेस. अगर शी डजंट अलाउ यू टू गो आई कुडंट बी डूइंग दिस. सो बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इज वी हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग. शी लव्स वॉट she does. I love what I do, and that is the most important thing yahan pe is passion.
4: So music was your passion.
2: No, I do other things as well.
3: Passion
2: is very important.
4: When you have passion to time nikal jata
2: hai. And when you have the support of your family, I think that is very important. Otherwise it's very hard. Aapko malum hai na. So she allows me to do what I want to do. And that is why we are you know, we are married for 31 years and we have a balanced
1: हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको.
2: हाँ जी.
4: और प्रदीप जी, केदार जी और अभिजीत जी ने हमारे कार्यक्रम को म्यूजिकल बना दिया है आज पूरी तरीके से.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
4: तो श्रोता एंजॉय कर रहे होंगे.
1: बिल्कुल बिल्कुल. श्रोताओं से हम फिर से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अपना कमेंट्स भेजते रहिए अगर पुरस्कार जीतना है, क्योंकि हमारे पास 5 टिकट हैं आज के कार्यक्रम के थ्रू. और इससे पहले कि हम केदार जी का एक और रोमांटिक सॉन्ग सुनाएं, तो हम एक स्पॉन्सरशिप मैसेज भेजाना चाहते हैं. करी मास्टर.

0: भी मिस्टर
1: नहीं सॉरी, हाँ फिर से पूछिए शैलजा जी।
2: हम ये पूछ रहे थे आपसे कि इतना बड़ा आपका जो प्रोजेक्ट है कि इसमें इतने सारे देश इन्वॉल्व है, साउथ पूरा साउथ इन्वॉल्व है, साउथ एशियन कंट्रीज, तो आप इसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं सिडनी में बैठकर?
3: देखिए ये आसान नहीं है, बिकॉज जस्ट टू मैनेज वन इंडियन कम्युनिटी इज अ बिग बिग थिंग।
2: बिग थिंग,
3: हाँ जी,
2: यस।
3: तो इसमें क्या है, द वे वी आई डिड इट वाज आई अपॉइंटेड एम्बेसडर्स from each country.
2: Achha, achha.
3: I identified who are the key leaders in the art and cultural field or even a community leader. तो उनको हम हमारे हर साल हमारा मैनेजमेंट टीम हो जाता है, सफल सफल फेस्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कमिटी। सो हर कंट्री के लोग दे ब्रिंग देयर पीपल। मैं तो बहुत मुश्किल हो जाता, पहले बहुत मेहनत की मैंने, हर नेपाली फंक्शन या बांग्लादेश फंक्शन जाके आई टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और ये यू नो इट इज नॉट ईजी, दे विल से व्हाट्स इन इट फॉर मी, हमारा। सो वी हैड टू ब्रिंग दैट कोऑपरेशन, यू नो, एंड वो उससे एवरी ईयर वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, एंड वी ऑल्सो अवॉर्ड पीपल इन ईच कंट्री इफ दे एक्सेल इन आर्ट्स लिटरेचर या म्यूजिक। एक वी गिव लाइफ टाइम अचीवमेंट, सफल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राइट, एंड देन वी गिव एनकरेजमेंट अवार्ड, एंड वी ऑल्सो गिव अनदर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री दे हैव डन। सो एवरी ईयर वी गिव अवार्ड एज वेल, और हमारा लास्ट थ्री ईयर्स वी आर हैविंग इट इन पायनियर थिएटर, ओके, सो वहाँ पे पीपल कम, बट एवरी बिफोर दैट हम लोग ये कॉम्पिटिशन रखते हैं, सोलो सिंगिंग, सोलो डांसिंग, ग्रुप डांसिंग, तो वी डू ऑल दैट, एंड देन द विनर्स आर ऑल हु कम एंड परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स एंड द पब्लिक एंड ऑल दैट ऑन द अवार्ड्स नाइट। सो दिस ईयर ये हमारा हो गया परफॉर्मेंस सफल अवार्ड, तो वी हैड 21 परफॉर्मेंसेस from different countries we showcase,
1: very nice.
3: So this year Bangladesh folk dances, we had 21 performances, or India ka I love to promote different styles of dancing. So odissi, I got odissi dancers, then I had the kathak, then we had kuchipudi, or bharatnatyam to hai, you know. So we try and showcase to the Australian public कि भाई इंडियन और इंडियन इंडिया इज नॉट ओनली बॉलीवुड डांसेस एंड इट्स नॉट ओनली भरतनाट्यम, देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डांसेस।
1: चलिए इसी के साथ एक गीत और सुन लीजिए।
2: बिल्कुल,
1: और इसके बाद रंजना जी
0: कुछ करंट टॉपिक पे बात कर लेंगे, और एक रमेश जोशी जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है प्रदीप जी, जो हम डिस्कस करेंगे। हाँ,
1: गाने के बाद।

0: Curry Master's Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश. तो रंजना जी जरा कमेंट्स पढ़ दीजिए शुरू से.
2: मैं एक कमेंट जिसने मेरा ध्यान खींचा है प्रदीप जी, मैं चाहूँगी कि केदार जी का भी व्यूज पे लिया जाए और हम उसके बारे में बात करेंगे. तो उन्होंने लिखा है कि ओल्ड सॉन्ग विच आर इंजॉयबल एंड एंजॉयड बाय मेजॉरिटी ऑफ ओल्ड एज ग्रुप्स.
1: थोड़ा सा माइक के पास आकर
2: जेन सी और जेन जी जो है वो उसको एंजॉय नहीं करते हैं.
1: अच्छा, ओल्ड सॉन्ग्स नहीं.
2: वो क्या होता है, जैसे मैंने भी देखा है कि जैसे मेरे हस्बैंड हैं वो किशोर कुमार के गाने सुनते हैं, तो जैसे ही वो कार में बजता है तो मेरी दो बेटियां हैं प्राइमरी स्कूल में, वो कहते पापा का गाना शुरू हो गया, हमको नहीं सुनना. तो मुझे लगता है कि म्यूजिक कैच करते हैं वो. अगर म्यूजिक नया हो उसी गाने को जब रिमिक्स करके जब बजते हैं या वो हम बजाते हैं तो वो सुन लेते हैं, लेकिन जब वो म्यूजिक वो पुरानी जो बजती है तो तब उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि नहीं हमको ये गाना नहीं सुनना है. तो मुझे लगता है अगर जो जेन जी या जो जेन अल्फा और ये सब है उनके लिए म्यूजिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन द वर्डिंग्स. व्हाट डू यू थिंक?
3: दिस इज वेरी ट्रू. आई हैव गॉट टू डॉटर्स राइट, दे आर नाउ 25 एंड 29, 30 years. पर ये क्या होता है ना, जो घर का वातावरण जो होता है उस हिसाब से बच्चे लोग को यू हैव टू स्टार्ट सिंगिंग एंड एक्सपोजिंग देम टू द ओल्ड सॉन्ग्स. बट एज योर आई एम एब्सोल्युटली योर राइट कि बच्चे लोग को यू नो दे हैव सो मच ऑफ डिफरेंट म्यूजिक, यू नो ईयरफोन्स पे दे हैव एक्सेस टू. आजकल कितना ये हो गया ना, दे वॉन्ट न्यू सॉन्ग्स एज वेल. बट आई हैव सीन व्हेन आई लिसन टू व्हेन आई सी ऑल दिस बिग प्रोग्राम्स ऑन यू नो वॉइस ऑफ इंडिया और यू नो ऑल दैट, आप देखो छोटे छोटे बच्चे लोग कितने प्यार से ओल्ड सॉन्ग्स दे आर सिंगिंग.
4: अरे भाई जो इंडिया के प्रोग्राम्स आते हैं छोटे बच्चे,
3: मैं तो ये बहुत अचरज हो गया कि भाई एंड दे आर व्हाई इज दैट, बिकॉज पेरेंट्स हैव टॉट देम यू नो टू लर्न टू एंड दे लव ओल्ड सॉन्ग्स एज वेल. बट बिकॉज दे आर इन द न्यू जनरेशन, आप बोल रहे हैं ना, दे गो टू स्कूल्स, दे गो टू एंड देन यू हैव टू बी विथ योर फ्रेंड्स यू नो. यहाँ का वातावरण अलग ही है ना, यू कांट से because you have a mixed race of people, Australians and different nationalities, so it peer pressure ho jata hai. If they want to listen to only old hindi songs, they need to unka wo pressure bhi hota hai na. So and they grow up in this environment. Yahan ka environment to bahut hi alag hi hai.
5: Bilkul
3: ha ji,
5: यहाँ के यहाँ पे तो किसी भी वर्ड्स को जो है उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ धमाके वाला म्यूजिक जो है वो नोट.
3: पर आप देखो ना यहाँ का भी नहीं, और आप देखो इंडिया में भी कैसे कैसे गाना आ रहा है, यू नो द लिरिक्स आर सो बैड, सो बट पीपल लाइक इट, इट्स द बीट द म्यूजिक जो होता है ना, और बट इट इज वेरी सैड, यू नो इट्स वेरी सैड. इवन नाउ फॉर मी आप देखो लिरिक्स जो पुराने लिरिक्स जो है, आप एक एक एक एक शब्द शब्द का मीनिंग आप देखो ना कितना ब्यूटीफुल.
5: यस, एंड आई थिंक दैट आवर जनरेशन इज गोइंग टू बी इमोशनली डिप्राइव्ड बिकॉज़ द वर्ड्स आर वन व्हिच क्रिएट द इमोशंस.
3: करेक्ट,
5: एंड इफ यू डोंट हैव इमोशंस देन आई थिंक इट्स अ वेरी सैड थिंग.
3: एग्जैक्टली,
2: और लेट्स होप कि अच्छी म्यूजिक के साथ अच्छे वर्ड्स
3: नहीं होएगा. सी आई टीच माय डॉटर्स एंड ऑल, दे नो व्हाट इज गुड म्यूजिक एज वेल, तो उनको देयर जनरेशन यू नो वी डोंट नो what's going to happen, but
5: you have to identify with your peers.
3: हाँ जी,
5: not my parents.
2: तो प्रदीप जी, मैं
1: ऐसा है कि अभी ऐसा है कि हम श्रोताओं को 10 मिनट का टाइम और दे देते हैं कमेंट्स के लिए,
2: उसके बाद हम
1: आप पढ़ेंगे और हम डिसाइड करेंगे किस किस को देना है प्राइजेस. लेकिन ऐसा है कि हमारे पास कुछ सूचनाएं पढ़ देते हैं, मैं पढ़ता हूँ. श्रोताओं, हमें ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष 21 से 23 अगस्त के बीच अध्यात्म और दर्शन यानी स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी के विश्व प्रसिद्ध वक्ता और आधुनिक वेदांत के अग्रणी आचार्य स्वामी सर्वप्रियानंद जी सिडनी पधार रहे हैं. अब सिडनी वासियों को उनके प्रेरणादायक व्याख्यान प्रत्यक्ष सुनने का दुर्लभ अवसर मिलेगा. मुख्य सार्वजनिक व्याख्यान रविवार 23 अगस्त को शाम 5 बजे वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के पैरामेटा साउथ कैंपस में आयोजित किया जाएगा. इस बारे में अगले कार्यक्रमों में विस्तार से बताया जाएगा. सर प्रियानंद जी बड़े क्लैरिटी से भारतीय फिलॉसफी का को बताते हैं. मैंने उनके पर्सनली बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और इट इज़ वर्थ अटेंडिंग दिस वन. इसके अलावा आपको जैसा कि हमने बताया है कि रफ़ी फॉरएवर प्रोग्राम हो रहा है 14 जून को, और इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं सादिक जी को 04332386 या अभिजीत भाई को 04252758833। यह 14 जून को हो रहा है रीजेंसी फंक्शन सेंटर में। और इसके अलावा एक ये है कुटुंब इंटरनेशनल योगा डे 2026, सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक जून 28 को हो रहा है, तो आप इसमें भाग लीजिए।
2: और ये एक फ्री इवेंट है, ये फ्री इवेंट है।
1: और हमने बताया कि मोहम्मद रफ़ी के प्रोग्राम का तो एक टिकट हम दे रहे हैं, केदार जी दे रहे हैं 2 टिकट हमारे श्रोताओं को, और अगले संडे हर कार्यक्रम में हम 2 टिकट देते रहेंगे 4 जुलाई तक। इसके अलावा 2 टिकट अभिजीत भाई दे रहे हैं, तो जल्दी से अपना कमेंट लिखिए और हमें हम बताएंगे कि किसने जीते हैं वो टिकट।
2: सो कुछ देर बाद हम कमेंट्स को पढ़ लेंगे प्रदीप जी। लेकिन हमने एक और जो समसामयिक घटना है, जो वॉर एंड इस सब के अलावा एक घटना है जो मीडिया हाउस का बहुत ध्यान खींच रही है भारत में, तो हमने सोचा था कि हम उसके बारे में थोड़ा एक बात कर लेंगे।
1: ठीक है।
2: तो एक केस आया है जो एक नव विवाहिता ट्विशा शर्मा, जो 5 साल के शादी के बाद उसने आत्महत्या कर ली है, और उसके बाद बहुत सारी ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि शायद उसको ससुराल वालों ने उकसाया या डॉरी डिमांड की। वो एक वो मिस पुणे थी, मॉडल थी, और वो शिफ्ट हो जाती है MP इंदौर, और उसके बाद ये सब घटनाएं होती है।
1: कम आ रहा है थोड़ा सा माइक।
2: तो मेरा एक कमेंट जो था जिसने मेरा ध्यान खींचा वो था किरण बेदी जी का। तो किरण बेदी जी कहती हैं कि जब वो इंडिपेंडेंट थी, इंटेलिजेंट थी, पढ़ी लिखी थी, फाइनेंशियली स्टेबल थी, तो उसने ऐसे अनहेल्दी अगर रिलेशनशिप नहीं अच्छा है तो वो मूव आउट क्यों नहीं हो गई। सो वाई वॉज द यू नो यू वाई इट वॉज एंडेड एज अ सुसाइड। तो उस चीज़ को मैं सोच रही थी कि ये कहना एक अलग बात होती है कि आप अनहेल्दी रिलेशन से निकल क्यों नहीं, बट एक प्रेशर होता है। आपको लगता है कि उसने अपने फादर मदर को रीच आउट नहीं किया होगा, या एक सोशल प्रेशर भी होती है कि अरे अगर घर वाले सपोर्ट कर देते हैं तो लोग ये भी नहीं बोलने से चुकते हैं कि इन्हीं का हाथ है, लड़की का घर उन्होंने तुड़वा दिया, बेटी का घर तुड़वा दिया, तो लोग कई बार कहते हैं कि नहीं एडजस्ट करो एडजस्ट कर लो, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और बहुत सारे अलग अलग विचार हैं इस पर, लेकिन एक थॉट प्रोवोकिंग भी है कि आज जब ये समझाना पड़ता है लोगों को आज भी कि एक डिवोर्स डॉटर जो है वो डेड डॉटर से बेहतर है, तो ऐसे में कितनी उम्मीद बचती है, क्या हम सोचते हैं इसके बारे में?
1: बिल्कुल रंजना जी, बड़े अफसोस की बात है कि आज के ज़माने में जबकि लिटरेसी लेवल इतना हाई हो गया है तब भी लोग इस तरह के काम करते हैं कि डाउरी डेथ्स होती हैं, इसमें भी
2: और शायद ये पैसे। काफी पढ़े लिखे परिवार की बात कर रही हूं, उनकी जो मदर इन लॉ है वो रिटायर्ड जज है, उनके जो हस्बैंड है वो लॉयर है।
1: तो मतलब इस तरह की बातें क्यों होती हैं? तो किसी ने ये, मैंने एक खबर और भी पढ़ रहा था, किसी के विचार थे कि उनका कहना ये जो पेपर लीक होते हैं ना एग्जाम के, इट इज अ साइन ऑफ समथिंग वेरी रॉन्ग विद द सोसाइटी इटसेल्फ,
2: ऑफ कोर्स,
1: है ना, कि हर लोग आदमी जल्दी से जल्दी जितना पैसा हो सके उतना कमाना चाहता है, और इसी के ये रूप हैं वेरियस जो हम लोग बात कर रहे हैं, डाउरी डेथ और ये पेपर लीक होना और इस तरह करप्शन। आशा है कि भविष्य में इस सब का सुधार होगा। इसके अलावा और तो कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसके पहले कि आप रंजना जी पढ़ा है, किदार जी का एक गीत और सुनते हैं
5: जी। तो ये जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्सट्रीम है, और इस पे तो विषय विचार करना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि किस तरह से हम इसका निर्मूलन कर सकते हैं। भारत सरकार ने भी कितना ज़्यादा अभियान चलाया है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, डाउरी के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी आज के दिन में हो रहा है। तो बहुत सारे हम लोग सोच सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ होगा, पढ़े लिखे घर में, इतनी वेल कनेक्टेड फैमिली, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है।
3: रंजना जी, आप ये बता रहे थे ना कि why she couldn't get out of the relationship. ये इतना आसान नहीं है. She was reaching out. वो क्या होता है ना जब it's beyond tolerance. Only then the woman will make a move. And she reached out to her major her brother. तो बोला आपको पसंद नहीं तो आप आ जाओ. But उतने में ही देखिए ये टू हर मेजर मेजर हर ब्रदर तो बोला आपको पसंद नहीं तो आप आ जाओ. बट उतने में ही

0: विल ऑलवेज गिव अ लॉट ऑफ चांस टू द हस्बैंड।
1: तो
0: ये यही का मसला नहीं है, ये इवन इन दिस ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी डोमेस्टिक वायलेंस यू नो इतना भयंकर हो जाता है कि दे आफ्टर इट कम्स टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न द वुमन रन्स अवे, शी गोज एंड टेक्स हेल्प विद द शेल्टर्स एंड ऑल दैट। तो देखिए ये इट्स अ वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन, वेरी वेरी सैड।
1: हाँ जी, चलिए गीत सुन लिया जाए।
0: हाँ जी।

0: answers as well.
1: Ranjana ji, आप बताइए कि क्या क्या.
2: तो श्रोताओं, कार्यक्रम के शुरुआत में प्रदीप जी ने एक रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपको किसी भी कमेंट से या किसी भी कार्यक्रम के किसी हिस्से से आपको प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपके पास

0: शिकायत है तो आप हमसे संपर्क करें, ना कि थर्ड पार्टी के पास जाएं। और ये 3 GB ने भी उसको दोहराया है तो आप प्लीज़ उसका ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पास ऐसी शिकायतें आती हैं। तो और आप ये ग्रुप के डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, उसमें ये लिखा है कि आप किसी की भावना को आहत ना करें, ऐसे कमेंट्स ना करें, ऐसे फॉरवर्ड्स ना भेजें जो कि दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। तो चलिए प्रदीप जी, मैं अब कुछ कमेंट्स पढ़ रही हूँ और आप बताइए फिर हमारे जो है विजेता कौन है। तो लीला तिवानी जी पहले लिखती हैं कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और विश्व के विस्तृत समाचारों के बाद एक खूबसूरत विचार और बहुत सुंदर गीत, सभी रेडियो दर्पण के दर्पण को बहुत बहुत धन्यवाद। लीला जी, आप हमेशा कमेंट्स करती हैं, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं इसको। पैट वाराणसी जी, इन्होंने लिखा है कि ग्रेट स्टार्ट विथ आपके हसीन, क्या था, हसीन, आपके हसीन रुख। हाँ, ओपी नैयर वॉज एन अमेजिंग टैलेंटेड कंपोजर हुज ईगो प्रोबेबली हर्ट हिज सक्सेस टू एन एक्सटेंट, और हम सब थोड़े बहुत उससे अग्री करते हैं। प्रदीप उपाध्याय जी ने, जो हमारे को होस्ट हैं, उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया है और उन्होंने लिखा है कि स्टूडियो में बिल्कुल संगीतमय माहौल है, जैसा कि हमने देखा था केदार जी हैं और अभिजीत जी आए, तो एक संगीतमय माहौल आज का था हमारा। शैलजा जी, रंजना जी का संगीत ज्ञान और अभिजीत जी की उपस्थिति आज बहुत ही सुंदर चर्चाओं को जन्म दे रही है, धन्यवाद प्रदीप जी। प्रदीप जी ने भी अपना विचार रखा है कि पुराने संगीत की बात अलग है, 60 के दशक के गानों को गोल्डन यूं ही नहीं कहा जाता, यह दौर मेरे विचार से अच्छे संगीत और सुंदर लिरिक्स का बहुत अद्भुत संयोजन रहा है। तो इस पर भी हमने बात की थी रमेश जोशी के कमेंट के बारे में कि अच्छे बोल होते हुए भी आज की जनरेशन क्यों नहीं सुनना चाहती, और शायद म्यूज़िक जो है वो कहीं ना कहीं जो कैची फैक्टर है वो मिसिंग हो जाता है। लीला जी फिर लिखती हैं, ऑस्ट्रेलिया के पले बड़े हमारे नाती को गोलमाल फिल्म का गीत आने वाला पल जाने वाला है इतना अच्छा लगा कि वो उस पर वो झूमने लगे और उसका अर्थ भी उसने पूछा। तो ऐसे कुछ अगर कैच कर ले आज के जनरेशन तो काफ़ी अच्छी बात है। विकास केसरवानी जी ने लिखा है कि नाइस प्रोग्राम, द वॉइस ऑफ अभिजीत जी एंड केदार जी आर गुड टू एंजॉय। सत्य खन्ना जी लिखते हैं कि अभिजीत जी इज़ अ ग्रेट पर्सन, वी अटेंडेड हिज प्रोग्राम, ही प्रोवाइडेड गुड म्यूजिक एंड सॉन्ग्स, ऑल द बेस्ट अभिजीत जी। हमारी तरफ से भी अभिजीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमेश जोशी का कमेंट मैंने पहले पढ़ा था और इस पर हमने बात भी की थी कि आज की जो जनरेशन अल्फा है या जनरेशन जी है वो क्यों नहीं सुनती है इन गानों को, जो कि 60 और 70 के दशक के गाने होते हैं। अरविंद जी ने लिखा है, अभिजीत सरकार जी का कार्यक्रम ज्ञान, मनोरंजन और प्रेरणा का सुंदर संगम है, उनकी प्रस्तुति श्रोताओं को हर विषय से गहराई से जोड़ती है, दर्पण रेडियो अपनी उत्कृष्ट सामग्री और मधुर प्रसारण के लिए प्रसिद्ध है, यह मंच श्रोताओं को नई जानकारी, संस्कृत और सकारात्मक सोच से समृद्ध करता है। धन्यवाद अरविंद जी, आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं, हमको उत्साहित करते हैं कि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। रीचा जी जो हमारी को होस्ट हैं, उन्होंने लिखा है मनोरंजक और सदाबहार गीत। हेमलता जी लिखती हैं, नमस्ते टू दर्पण रेडियो टीम एंड ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी एंजॉयबल प्रोग्राम, आई एम लिसनिंग दिस प्रोग्राम वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, यू हैड योर हार्ड वर्क फॉर अस इज़ रियली अप्रिसिएटेड, ऑलवेज प्रोग्राम इज़ एंजॉयबल। थैंक यू हेमलता जी। उसके बाद हमारे पास कमेंट आया है छाया अग्निहोत्री जी का, जो जिन्होंने अपने अंदाज में लिखा है कि उफ, बहुत ही मनोरंजक प्रोग्राम, सुंदर गीतों की श्रृंखला, कमेंट्स करना ही भूल गए, इतनी अच्छी और सुंदर थी, पुराने गीतों में अच्छे शब्द, मनमोहक संगीत का समागम है, एंजॉय कर रहे हैं बहुत खूब गेस्ट एंड प्रेजेंटर्स। और लीला तवानी जी का एक जो क्लोजिंग मैसेज मैंने देखा वो है कि मधुर चुलबुला गीत, ये दिल ना होता बेचारा। तो
1: ऐसा है जो कि आपने सबके कमेंट्स पढ़ दीजिए, मुझे अरविंद वर्मा जी का एक तो अच्छा लगा कमेंट, रमेश जोशी जी का भी अच्छा है और लीला तवानी जी तो हैं सदाबहार। तो हमने सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी का एक टिकट दिया है लीला तवानी जी को, और जो यहाँ पर 6 तारीख को अभिजीत जी का कंसर्ट है उसके 2 टिकट हमने दिए हैं रमेश जोशी जी को, और अरविंद वर्मा को हमने दिए हैं केदार जी के 2 टिकट जो 4 जुलाई को है, गाता रहे मेरा दिल। तो इसी के साथ साथ हमारा कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने जा रहा है। वैसे हम अंत इस कार्यक्रम का तो करेंगे केदार जी के ही गीत से।
0: सारे विनर्स को कांग्रेचुलेशंस। लीला जी, अरविंद जी एंड रमेश जी,
1: हम आपसे संपर्क करेंगे, आपको बताएंगे कि आप किस तरह से टिकट ले सकते हैं। तो केदार जी, आप आए हमारे साथ, अभी मुलाकात पूरी नहीं हुई है, बार बार होनी पड़ेगी, कम से कम 3 बार तो करनी होगी। और ये है, आप बड़ा अच्छा हमारे मंच की शोभा बढ़ाई आपने, बड़ा अच्छा लगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। अब हमारा समय करीब करीब समाप्त होने जा रहा है, दूसरी टीम आती होगी। शैलजा जी,
2: केदार जी, आपका हार्दिक धन्यवाद है। मैं तो आपसे बहुत ही प्रभावित हूँ कि अभी तो मैंने लगता है कि आपका सिर्फ 10% ही दिखाया है। अब तो मैं और भी आपसे बातचीत करना चाहूँगी। एक बार पता लग जाता है कि सोने खान कहाँ पर है तो उसमें भीड़ लग जाती है कि हर आदमी ले आता है लेने के लिए।
3: देखिए, आप थैंक यू वेरी मच, आपने हमको मौका दिया है। आई फेल्ट वेरी नाइस एंड वेरी वेलकमिंग एंड आई, इफ यू वांट मी आई कैन कम नेक्स्ट संडे एज वेल। हमारा जो वी कैन टॉक अबाउट थिंग्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सेवा के लिए मैं ये कर रहा
2: हूँ।
3: आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट
1: आपका दिस इज अ कॉन्सर्ट सेवा। हाँ,
3: यस यस, एंड आई एम लुकिंग फॉर सम स्पॉन्सर्स एज वेल। यू कैन गिव द नंबर्स, इट्स फॉर अ वेरी गुड कॉज। माई नंबर इज 0452401956।
2: एक बार आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दीजिएगा इसके लिए,
3: क्योंकि थैंक यू वेरी मच। और अगेन रंजना जी, लवली टू मीट यू एज वेल। आई हैव सीन यू, मतलब आपको तो मैं देखता रहता हूँ। प्रदीप जी, आई हैवंट सीन यू आई थिंक, बिकॉज़ आप
0: एक बार आना बनता है।
1: मेरा सौभाग्य कि आपसे मिलना हुआ।
3: हाँ जी, हाँ जी।
1: अच्छा, चलिए फिर चलते चलते, आप हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार।
0: और जाते जाते कौन सा गीत सुना रहे हैं प्रदीप जी?
1: एक और रोमांटिक सॉन्ग है केदार जी का,
0: क्या बात है।